0: पावे सै बलिकार तू सदा सलामन निरंकार असंख मूर राम कौर असंख जोर हर राम कौर असंख मार का चाय चोर असंख अल्ब हत्या कमाए असंख पाप असंख कुरियार कुरे फिराए असंख निंदा सिकारे वार वरिन चावा एक वार तू सदा सलामन निरंकार अगम अगम संकलो अग्रि नाम अग्रि सला अग्रि लकंबो लंबन
1: अग्रि सिर संजोग खान
0: जिने लेके ते सिरनाई
1: चिपुर माई टिप टिप पाई
0: तेता कीता तेता नाओ
1: भिन्नावे नाही को ताओ
0: पुरत कवंका विचार
1: वारे न जावे एक बार
0: जो तुए पावे सै बलिकार
1: तू सदा सलामत निरंकार
0: वरिये हतरे तंदे
1: पानी दोते उत्रस के
0: मुझ पलीती का परा होए
1: दे सबुन ले यो दोई
0: वरिये मा पपा के संग
1: ओ दोपे नावे के रंग
0: पूनी पपिया करनाए
1: कर कर करना लिख ले जाओ
0: आपे पीछा पे विकाओ
1: नानक हुक्मी आवो जाओ
0: तीरता त्या दातान
1: जे को पावे तो कमान
0: सुनिये मानिये मकी तबाओ
1: अंतर का तिर मनाओ
0: सागुन तेरे में ना कोए
1: गुन की ते बगत न होए
0: स्वासा पानी वर्माओ
1: सात सुहान सरामन चाओ
0: कवन सुवेला वत कवन कवन जित कवन वार
1: कवन सी रुति माओ कवन जित हो आकार
0: बिल न पाया पंतजी होवे लिख पुरान
1: भकत न पाया करिया जी लिखन लिखरान
0: तीते वरना जोगी जाने रूप माओ न कोई
1: जा कर सुरती कौ सजे आपे जाने सोए
0: कीव करा का कीव सलाई कीवन कीव जाना
1: नानक आखन सब को आके एक तू एक सियाना
0: बदसाई बदी नाई किता जका होवे
1: नानक जे को आपा जाने आगे ज्ञान सोए
0: पताला पताला गस गस
1: और एक बातक के वैज्ञानिक बात
0: से सतार कहां कते बा सुनका एक दात
1: लको इता लिख्या लके होए बिनास
0: नानक वादा आकिये आपे जाने आप
1: सलाई सलाई एती सुर न पाया
0: नवरी आवे पावे समल न जानिये
1: समुन शाह सुल्तान गिरा सती मल्दान
0: कीरी तू न होवे नीज तिस मनो न विसरे
1: अंत न सिफ्टी कैना अंत
0: अंत न करने दे न अंत
1: अंत न बेकन सुन न अंत
0: अंत न जापे क्या मन मान
1: अंत न जापे कीता आकार
0: अंत न जापे पारावार
1: अंत करन कहते बिलाए
0: ताके अंत न पाए जाए
1: एहो अंत न जाने कोई
0: बहुत खये बहुत होए
1: बदा साहिब ऊंचा ताओ
0: ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ
1: ए बार ऊंचा होवे कोई
0: जिस ऊंचे को जाने सोए
1: जेवर आप जाने आप
0: नानक नदरी कर्मी दात
1: बहुत कर्म क्या न जाए
0: बादा दाता तिन तमाए
1: कहते मंगे जोर पार
0: कहतिया कर नई विचार
1: कहते कब तू तेवे कार
0: कहते ले ले मुकर पाए
1: कहते मुरे काही काई
0: कहतिया दूध भूख सदमार
1: ए भी दात तेरी दातार
0: मन वलासी बने होए
1: और अग्ना सके कोई
0: देखो कहे अकन पाए
1: और जाने जत्या मैं काए
0: आपे जाने आपे ते
1: आके शिबी कई के
0: जिसनो बख्शे सिफत सला
1: नानक पच आए पच आओ
0: अमूर गुण अमूर वपार
1: अमो वापर अमो बंदार
0: अमो लावे अमो ले जाए
1: अमो ले बाए अमो समाए
0: अमूल धर्म अमूल दीवान
1: अमूल तोल अमूल परवान
0: अमूल बख्शीश अमूल निशान
1: अमूल कर्म अमूल फरमान
0: अमूल अमूल क्या न जाए
1: आख आख है लिव लाए
0: आके वेद पपुरान
1: आके परे करे वक्यान
0: आके वर में आके इंद
1: आके गोपी टै गोविंद
0: आके ईश्वर के सिद्ध
1: आके कहते कीते बुद्ध
0: आके तरम आके देव
1: आके सुर नर मुंजन सेव
0: कहते आके आकन पाए
1: कहते कह के उतु जाए
0: कहते कीते होर करे
1: ता आक न सके के ही के
0: देवत भावे तेरत होए
1: नानक जन सच सोई
0: जे को आके बोल पितार
1: ठल के सिर गवार गवार
0: सोदर के हसो घर के हजित सरत समाने
1: बाजे नारने कसंक कहते बावन हारे

सब जगत बनायो, देव तैत जचन पुजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिव कुन को सब गुण सुख दियो, सतुरन को परमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी तेर कुंचर असतूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, गत गत के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आखरत खरत हो कब हूँ, तुम्हें मिलते दर सब हूँ, जेते बदन सिर सब दारे, आप नि बुझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंका निर्भिका निलंब, आद अनिल अनाथ असंभ, ताका मूर उचारत भेदा, चाको भेव न पावत भेदा, ताको कर पह न मानत, महामूर्ख कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्ह न भिव, आप आपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुय तेती, तुम लकाय न जाय पसारा, केवद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूप, रंक ब्योराब कही भूपा, अंदर जैत सैचकीनी, उत्पुज खान बाहर रच दीनी, कहू फुरचवा फै बेटा, कहो सम प्यो शंकर एकेटा, शिग्र सृष्टि दिखा अचन बबा, आद जुगाद स्वरूप स्वयं बबा, अब रचा मेरी तुम करो, सिक्य उबार सिक्य संग्रो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन गाता, जे अस दुर्चव सरणी पड़े, तिनके दुष्ट दुख द्वे मरे, पुरक जवन पग परे तहारे, तिनके तुम संकट सब तारे, जो कल का एक बार दिए है, ताके काल निकने ए है, रचा होए त सब काला, दुष अरसा थरो तरकाला, कृपा दृष्टन जाय नहर हो, ताके ताप तनक में हर हो, रिद सिद्ध गर्मो सब होई, दुष्ट चाच सके न कोई, एक बार जिन तुम संभारा, काल फास्ते तय उबारा, जिन्नर नाम तहारो कहा, दर्द दुष्ट दोकते रहा, खड़ग खेत में सुरन तहारी, आप हाथ ले उबारी, सर्व तोड़ मोह सहाय, दुष्ट दोकते ले बचाए, कृपा करे हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, खिल बिक सकल दे को हरता, दुष्ट दोकिन को च करता, श्री असजब वे दियाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख नित से व्याप्त कोई, अरे सुने गुण जो या सुरस न पावे, सुने मूर्छित लय चतुरता आवे, दुख दर्द पैनिक न तिन नर के रहे, हो जो या की एक बार चौपी कहो कह, स्वया पाय गह जब ते तुमरे, तब ते को अंक तरे नहीं आन्यो, राम रहीन पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबे, पो भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी, कर में न कहो सब तोय बकान्यो, दोहरा सगल द्वार को चाद के, गाहियो तुम्हारो द्वार, बाग है की लाज अस गोविंद दास तुहार, राम खली महिला तीज आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद बया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु त पाया सहज सेती, मन वज्या वाताया, राग रत्न परवार प्रिया, शब्द गाव न आया, शब्दोत गावो हरि के, राम मन जनी वसाया, कहे ना

सचे साहेबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब कुछ जिस ते सो पावे, सदा सिव चलाए तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वस्या वाचे शब्द कनेरे, कहे नानक सचे साहेब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुक्का सब गवाया, कर संत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाया, सदा कुर्बान कीता गुरवितो जिस्तिया ए वड़ियाया, काहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे कला चित कर दारिया, पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुर निनको से नाम हर के लागे, कहे नानक ते सकोआ तित कर अनहद वाचे। मुंडावनी महला पांचवा, ताल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ताकर का पायो जिसका सबस अदारो, जे को खावे जे को पूछे तिसका हो उदारो, ए वसत जी ने जाए नित नित रख और दारो, तम संसार चल नग धरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पांचवा, तेरा कीता चातो नाही मैनो चोग कितोई, मैंने गुण यार को गुण नाही आपे तरस पयोई, तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर साचन मिलिया, नानक नाम मिले तां जीवां तन मन तीवे हरिया। पौड़ी, तिते तू समरत चिते कोय नाय, ओते तेरी रख अग्नि उतर महे, सुन के जम के दूत नाय थे दे छद जाए, भोजल बिकम असगाओ गुरु शब्दी पार पाए, जिनको लगे प्यासा अमृत से खाए, कर में हो पुन गुण गोविंद गाए, सब से नौ कृपाल समियाल शाह शाह, वीरता कोई न जाए जे आवे तुद आए। श्लोक महला पांचवा, अंतर गुर आराधना जीवा जाप गुरना, नेत्री सतगुर फेकना श्रवणी सुनना गुरना, सतगुर से तीरत्या दरगे पाय ठाओ, कहो नान कृपा करे जिसनो एवत दे, जग में उत्तम खाद्य विरले कै कै। महला पांचवा, रखे रखनहार आप उपारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, होआ आप दयाल मनो न विसारियन, साध जना के संग भव चल तारियन, शाक्त निंदक दुष्ट खिन माह बिदारियन, तिस साहब की टेक नानक मन माए,